नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता, इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

मगर यहाँ तो कोई नहीं है।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुन

0: नया मौका जहाँ से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहाँ नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी, उसके पीछे एक वजह है। खास वजह ये है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मूवमेंट कम होता है और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूं। और बहुत अच्छी टैलेंटेड रिसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है, इज फीलिंग गुड।
0: ओह रियली नाइस, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?
1: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है लॉ ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को, लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मेंस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
0: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आए, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
1: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, करना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
0: ओह ग्रेट ग्रेट। कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
1: बहुत खुशी मिलती थी, जो हम लोग जीत कर आते थे तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ, मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है, नाम है, तो जस्ट वो खुशी बहुत अनबिलीवेबल होती है,
0: बयान ही किया जा सकता है।
1: एग्जैक्टली, और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए।
0: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती, यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 FM। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और मेरे साथ आज खास मेहमान है। खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स की एक मीनिंग है, और खासकर जब उसमें म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है या बिल्कुल खराब है।
0: तो इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: हाँ जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड में आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो?
1: एक्चुअली छोटे थे, मदर नहीं को ऐसा लगता था कराते खेलेगी लग जाएगी, बट फादर नहीं नहीं कर लेगी कोई दिक्कत नहीं
0: जी
1: है
0: जी।
1: उसके बाद में मदर भी बहुत एग्री हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई। मदर, ब्रदर,
0: सभी ने सपोर्ट किया,
1: सपोर्ट रहा,
0: कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से किसी ने रोका नहीं आपको, हमेशा ही पुशअप किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो?
1: हाँ सर, एक्चुअली फैमिली से सपोर्ट हुआ बट ससुराल से नहीं हुआ।
0: ओके ओके,
1: ऑब्वियस सी बात है। और इतने क्रैशेस बढ़ गए कि डाइवोर्स हो गया।
0: ओ माय गॉड, सॉरी, मैं आपकी बातों को छेड़ दिया।
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: सर, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो आपका ख्वाब है और वो ख्वाब आपका हकीकत में तब्दील हो, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ख्वाबों को संजो के रखे हैं, पाल कर रखे हैं, अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली, हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं।
0: सॉरी, मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों बातों में वो बात आ ही गई। अच्छा, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं। मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो हम आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, कभी कुछ होता है ऐसा?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। आया, दीदी मुझे मार दिया, मैंने कहा अभी बताती हूँ, उसको बड़ा मार गया।
0: अच्छा, लिटरली? ओह माय गॉड।
1: एग्जैक्टली।
0: देखिए, मैं पहले तो डरा हुआ था लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश ये है कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें हम अपना 100% दें तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये लिसनर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिसनर्स, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत अच्छा।
0: सेम हियर, हाय हाय, मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बांकुरे जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही है तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में जी, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके

0: में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को, एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ है?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाई करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाई करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट द थिंग है, जो समाज का जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप मानती कि है जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो कल्चर आता है, आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदि होते चले जाते हैं, तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है, और उसका जो कारण है हम स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको, संस्कार।
0: क्या
1: संस्कार।
0: बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं चाहता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है, उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का। कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया कि अगर हम सोचो देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है। मतलब दिस एंड दैट। मोबाइल एक ऐसा हो गया है कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस यस,
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टेक्स्ट कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगी।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है थोड़ा सा, मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है। मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में, मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गाँव है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड सी, हमारा जो भारत है उसकी तो जो
0: गांव में बसते हैं
1: right. वहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर। सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिक ऑन दैट. सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट, एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट.
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है, और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे. संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं. फाइनली कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ, और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है. हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना, मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं, दैट इज की फॉर देन द फैशन. अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना, मतलब भारत का नाम किया है, बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस.
0: Exactly.
1: But still there are the, this is the society. Societies like that, na, ki in small cities and all, the parents don't allow, ki nahi, abhi nahi, this is not for you, you go for that. So that should be stopped.
0: ओके सो लिसनर्स, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं. कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें, उनका जो क्षेत्र है वो जो करना चाहते हैं उनको करने में आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे. सो ममता जी, आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई. आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें, और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे, सजा रहे. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: धन्यवाद.
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर.

0: जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना कहलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जहाँ जहाँ पानी होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा। जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। राम राम दोस्तों, आप सत्रियकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके हैं। 31 अगस्त मंडे का दिन, जाहिर सी बात है कि मंडे का दिन है तो ऑन रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, क्या है खास जाने के जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशाता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक अगर हो तुम, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। और इसलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। 9:10 हो चुके हैं, 31 तारीख है, मंडे का दिन है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल हमारे आसपास के खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में आप और हम पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटर नोएडा में आज 31 अगस्त 2026 को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और उमस भरा मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्तमान तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नमी यानी कि ह्यूमिडिटी की जो संभावना है 64 से लेकर 70% तक रहने वाली है। सच बात तो है कि नमी यानी कि उमस की वजह से दिक्कत है, परेशानियां सुबह से ही हमें महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक सीढ़ी चढ़े यानी कि अगर फर्स्ट फ्लोर भी जाना पड़ रहा है तो लगता है कि नहीं यार लिफ्ट ले लो, मतलब उमस बहुत ज्यादा है ना। और वर्षा की जो संभावना है यानी कि हल्की बारिश या बूंदाबांदी की उम्मीद 10% के आसपास है। हाँ आज यानी कि खुले में आप टेंट गाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ और इसके अलावा क्या खबर है? इसके अलावा जो खबर है बस यही कि खबरदार रहने की जरूरत है, यानी कि जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर सेहत पर फर्क पड़ता है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो देखते ही बन रहा है। यानी कि किसी को आछी आछी हाँ सर्दी खांसी जुकाम की शिकायतें हैं तो खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करेगा, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेगा, बच्चों का सही समय पर इलाज कराइए, बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए और जिनसे आप बेपना मोहब्बत करते हैं उनका भी ख्याल रखिए, है ना। मौसम का मिजाज बदलता है तो उसका फर्क आपकी सेहत पर पड़ता जरूर है। ऐसे में गार्गल आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए, बाहर का खान पान जो है उसको आप अवॉइड करिए, और बेसिक बातों को ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ट्रैफिक के अपडेट्स के बारे में, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ ब्यूटीफुल ट्रैक। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा, गहरा हुआ फ्रॉम द मूवी धुरंधर। आय हाय क्या गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, अरमान खान, इरशाद कामिल के बोल, सिर्फ सुरो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हो गया चंगा, पर राघव की टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:21 हो चुके हैं। 31 तारीख है, यानी कि अगस्त का आज है आखिरी दिन। और कहेंगे स्कूल्स में, मार्केट में आप देखेंगे कि बाजार शट डाउन यानी कि बंद रहेंगे, स्कूल्स हाफ डे हो जाएगा और कहीं ना कहीं उथल पुथल रहती है। उथल पुथल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही फर्स्ट तारीख आती है, फर्स्ट डेट आती है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बारे में जानेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक के हालचाल क्या हैं। आज 31 अगस्त 2026 को ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर के कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम और बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। यदि आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ खास बातों को ध्यान में रखिएगा, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। जेवर थाना क्षेत्र के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा लेन पर लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन बहुत सोच कर समझ कर आप आगे निकलिएगा और धीरे धीरे वहां से गाड़ियां निकल भी रही हैं। पुलिस यातायात को सामान कराने में जुटी हुई है और लेकिन इस रास्ते पर गाड़ियों की जो तार है वो बेहद स्लो है, धीमी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो काम और सुबह की पीक आवर्स यानी कि दफ्तर जाने के समय के कारण इस रूट पर भी जो गाड़ियों का दबाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो नई सुविधा यानी कि नई बात निकल कर ये सामने आ रही है कि राहत की बात यह कि यात्रियों के लिए नोएडा सेक्टर 51 और 52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला जो नया स्काई वॉक है वो खोल दिया गया है, जिससे मेट्रो बदलने वाले यात्रियों को अब राहत मिलेगी, थोड़ा समय बचेगा। और आश्रम से सराय काले खां की तरफ आप जा रहे हैं तो रिंग रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्ते पर मरम्मत का जो काम है वो काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा धीमिया रहने की संभावना है। और स्कूल पूरे खुले हुए यानी कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चालान से बचेगा यानी कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छे तरीके से पालन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, सिर्फ सुरशादा 90.8 एफएम पर। क्या बात है, आ जाओ आए हैं।

0: मस्त हो जाओ।
1: मेरा नाम गोनू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरी यानी गगन के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को सरल, सुगम, आसान बनाइए। टेंशन ना लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेकिन हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सच बात तो ये कि जिंदगी में जब आप अपने आसपास तनाव रखेंगे, किसी को तनाव देंगे, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि सामने वाला भी एक ऐसा ताना बाना बोलने की कोशिश करेगा जहां आपको वो गिराने के हर, कहते ना, हर भरकस प्रयास करेगा। तो इसीलिए बस खुश रखिए अपने आप को और एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखिए। जिंदगी का जो सफर है वो सफर सुहाना सफर होना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि बार बार सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब एक खबर को जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो ये समझिए कि यकीन मानिए कि ऐसी खबरें कहीं ना कहीं हमारे आसपास आ रही होती हैं। हापुड़ की एक खबर सामने आ रही है कि हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई सवार जो युवक थे कुछ घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो सोचिए, जिंदगी अभी खुश थी लेकिन क्षण भर में गमगीन हो गई सिर्फ एक रफ्तार की वजह से, है ना। सुरक्षित चलिए। नेपाल में जो त्रासदी आई है उसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले, है ना। और बस हम प्रार्थना ये भी करते हैं कि जब इस तरीके की दिक्कतें परेशानी आती हैं तो हो सकता है कि हमारा भी बहुत बड़ा इसमें योगदान हो। प्रकृति से छेड़छाड़ हम ना करें। एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। एक पौधा जब आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको खुशी होगी और समाज में कहीं ना कहीं आप और हम अपना योगदान दे रहे होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑफ सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में क्या खास हो रहा है उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। महीने की पहली तारीख जब आती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, निश्चित तौर पर उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज दिक्कतें परेशानी आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। जैसे रसोई गैस की अगर हम बात करें तो यानी कि कीमतों में बदलाव देखने की संभावना नजर आ रही है। EKYC की आखिरी जो तारीख है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, यानी कि 31 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन की आधार EKYC अगर आपने पूरी नहीं की है तो 1 सितंबर से आपको गैस सब्सिडी मिलने या बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। हवाई यात्रा बोले तो फॉरेन ट्रेवल में बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यदि आप भारत से विदेश यात्रा कर रहे हैं तो अब एयरपोर्ट के जो इमिग्रेशन काउंटर पर आपको बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैंप यानी कि मोहर नहीं लगाई जाएगी। फिर होगा क्या, यानी कि अब आप अपने फोन में ई बोर्डिंग पास दिखाकर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के बारे में भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस समेत कुछ जो बड़े बड़े बैंक हैं क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और निवेश और शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि सेबी के नए नियमों के अनुसार निवेशकों को अपने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी से जुड़े नए नियमों का पालन करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। अगर आपने अब तक ये नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, वरना दिक्कतें परेशानी आपके सामने आ सकती है, यानी कि फाइन देना पड़ सकता है।
1: आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन, और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन, क्रेडिट्स, आर्टिस्ट दीपशिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है, सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। पन्ना की तमन्ना है।

0: तेरे इश्क में, इश्क कर लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत का। जब आप सेहतमंद होते हैं तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा नशा होता है यार, हमने अपनी सेहत से प्यार कर लिया है, इश्क कर लिया, मोहब्बत कर लिए। और जब जिस दिन आप जिम नहीं जाते या कुछ छूट रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मिस होता है कि यार समथिंग इज, मतलब कहते हैं ना, मिसिंग, कुछ छूट रहा है ना। तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से दुआओं में यही मांगेगा कि हे मालिक, मेरी जो काया है वो निरोगी काया रहे, मैं सेहतमंद रहूं। क्योंकि जब आप सेहतमंद होते हैं तो निश्चित तौर पर आप दुनिया जहान की खुशियों को अपने दामन में ला सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन जब आपकी सेहत आपके साथ नहीं होगी, कितनी भी अथाह भंडार दौलत का आपके पास क्यों ना हो, लेकिन सबसे निर्धन व्यक्ति यकीन मानिए मैं होऊंगा अगर मेरी सेहत मेरे साथ नहीं है। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वॉइस सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि एक तारीख से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर आप अमल करेगा वरना दिक्कतें परेशानियां आपके सामने हो सकती हैं। अब ग्रेटर नोएडा के स्थानीय बदलाव जो हैं, यानी कि जो लोकल अपडेट है वो निकल कर ये सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सितंबर के महीने में नॉलेज पार्क के पास एक्सपो मार्ट की तरफ एक नई कनेक्टिंग रोड खोलने जा रही है, और जिससे होगा ये कि परी चौक पर जो लगने वाला जाम है उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो खैर, ये देखने वाला एक समय ही हमें बताएगा कि कितनी राहत हमें मिलने वाली है। शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि दीक्षा आरंभ शुरू हो चुका है और मैट्रिकुलेशन का जो काम है वो लगभग समाप्त हो ही चुका है, और इसके अलावा ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी लगभग चल ही रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में जानेंगे जरूर, यानी कि व्हाट्स हैपनिंग। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार। 40 मिनट 31 तारीख
1: को डीएम में स्लाइडिंग करती है ना, अच्छा लगता है।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय के आसपास क्या खास हो रहा है, शारदा विश्वविद्यालय के इस आंगन में क्या खास चल रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज 31/2026 को ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय से जुड़े जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एडमिशन और आवेदन की जो अंतिम तिथि है, जो अपडेट निकलकर ये सामने आ रही है कि शैक्षिक सत्र यानी कि 2026-27 के स्नातक यानी कि यूजी, पीजी और एमबीए कोर्स में आवेदन करने की जो तिथि है, जो लास्ट डेट है, वो निकलकर 31 अगस्त 2026 सामने आ रही है। और हालांकि जो प्रवेश की जो प्रक्रिया है, एडमिशन का जो दौर है, वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ सीटें जो बची हुई हैं, जो खाली सीट है, उनके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो स्टूडेंट हैं शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के तहत स्लॉट बुकिंग की जानकारी ले सकते हैं। खास बात यह कि नेशनल आई डोनेशन फोर्थ नाइट यानी कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी चल रहा है। मेडिकल स्कूल का जो अभियान है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और ऑप्थमोलॉजी डिपार्टमेंट ये इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और ये जो अभियान है 25 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर 2026 तक कंटिन्यू रहेगा और जिसके तहत लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और यही एक वजह है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते सामुदायिक रेडियो की जो भूमिका है वो लगातार यही है कि हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। और हेल्थ कैंप भी शारदा विश्वविद्यालय की तरफ से, शारदा हॉस्पिटल की तरफ से लगातार होते ही रहते हैं। तो बस इस तरीके से शारदा विश्वविद्यालय की जो एक्टिविटी है क्या खास है, उसके बारे में जानने के लिए बस सुनते रहिए स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:50 31 तारीख क्या है खास और जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होश आवाज में चलाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ब्यूटीफुल ट्रैक, परम सुंदरी, आए हैं।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: भाई और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल हैं छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर सनी 2। आइए सुनते हैं छाप तिलक ऑल ऑन सुरोशादा 90.8 FM।

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा परवरदिगार से यही कामना करता हूं कि सबका भला हो। फिलहाल वक्त का इशारा मैं होता हूं 9:11:56 31 तारीख जाते जाते ग्रेटर नोएडा में क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीआर में नौकरियों की बाहर आने वाली है। यमुना सिटी में 95 फैक्ट्रियां तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि जब फैक्ट्रियां तैयार हैं तो रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। और अपडेट क्या निकल कर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा नोएडा में, तो सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है, यानी कि नोएडा में पीएनजी कनेक्शन पर 6,000 रुपये मीटर सिक्योरिटी डिपॉजिट माफ की जा रही है। तो ये खास खबर थी भाई और मैंने वो का इशारा मैं होता नौ दो ग्यारह अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। वक्त का इशारा फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ब्यूटीफुल ट्रैक परफेक्ट, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होशो आवाज में चलाएगा। गुरु रंधावा की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद जाना पहचाना प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर। अरे ये HPV क्या होता है भाई और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सियातिया सिंह जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये सब क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे बाबू परेशान मत होइए, आज बहुत अच्छा और बड़ा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ
0: जी।
1: गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा लिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। बस उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहें? अगले दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए भैया ऐसे। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: सियातिया भैया कहानी तो आपने बहुत ही अच्छी सुनाई है लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए हमारे सुनने वालों को ताकि उनकी समझ में आसानी से ये बात बैठ जाए।
1: बिल्कुल बेशक। देखिए HPV का मतलब है ह्यूमन पैमिलोमा वायरस, नाम बड़ा लग रहा है होगा आपको
0: जी,
1: लेकिन पूरा मतलब इसका यही है, HPV का ह्यूमन पैमिलोमा वायरस। पर बात आसान है, ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका न जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: तो सियातिया भैया इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ कि ये जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
1: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आरजे बाबू?
0: वो क्या है सेतिया भैया, अब तो आप थोड़ा डरा भी रहे हैं सबको।
1: मैं डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता। ना कोई दर्द, ना कोई बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है।
0: मतलब आपका ये है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: ये तो बहुत खतरनाक बात है, तो फिर इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो होगा या नहीं है?
1: यही तो अच्छी खबर है आरजे बाबू। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: तो सेतिया भैया, जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनकी समझ में भी आसानी से आ सके ये सब बातें।
1: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: अरे सेतिया भैया, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर है या अन्य जानवर है खेतों में घुस करके फसल को खराब ना कर दे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओहो, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आ जाए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या इसके लगवाने की?
1: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आम तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: लेकिन सेहतिया भैया, मान लीजिए अगर कोई इससे बड़ी उम्र की लड़की हो, उसके लिए क्या फिर करना चाहिए?
1: देखिए भाई, तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर रहेगा।
0: बिल्कुल, ये सब बातें सेहतिया जी तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक बात और आ रही है कि ये जो टीका है वो लड़कियों का टीका है, यानी कि उनको लगवाया जाता है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: सवाल बहुत अच्छा आप कर रहे हैं भाई, यही तो सबसे अहम बात है। आरजे बाबू, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: तो सेहतिया भैया, जो आप बता रहे हैं इस बात को जरा विस्तार से बताइए।
1: चलिए विस्तार से बात करते हैं, यानी कि डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
0: बिल्कुल सही बातें कही हैं सेतिया भैया आपने।
1: देखिए भाई, ये एक दूसरे से सीखते हुए हम बातें रख पा रहे हैं आपके सामने और एक रिसर्च के आधार पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात सामने ये आती है कि अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा तो ध्यान नहीं दे पाएगा वो अपने परिवार पर, माँ बहन पर, बेटी पर, तो आधी लड़ाई वहीं वो हार जाएंगे। इसलिए पुरुषों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त।
0: तो सेहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पूरे जोश के साथ मैं इस बात को डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर वे माँ नहीं बन पाएंगी, माँ बनने में दिक्कत होगी।
1: देखिए आरजे बाबू, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं, अफवाहें।
0: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
0: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
1: भाई वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस से बचने के लिए होता है और कुछ नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की फिर क्या जरूरत है?
1: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे बाबू, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सियातिया जी, एक बात और बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
1: हाँ हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं भाई, और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसे केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी मां से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जब जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर भरता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत कुछ बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते हुए।
0: सियतिया भैया, ये तो आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई रानी की, लेकिन जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: देखिए साहब, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
1: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव, बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बचाव। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। फिलहाल के लिए नमस्कार। सुनो शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपके शहर ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और आज कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हम बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन की, इस अभियान की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवा जी, आप डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, साथ ही साथ आप ACMO भी हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के। तो सर, सबसे पहले HPV को समझना चाहेंगे, ये क्या है?
2: ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि हमारा जो यूट्रस होता है उसके शुरुआत के हिस्से पे होती है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, इसलिए इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है।
0: अब बात आती है कि इसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो कैसे फैलता है?
2: इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनके संपर्क में आने से फैलता है।
0: जो HPV वैक्सीनेशन, वो क्या अभियान है?
2: देखिए, HPV वैक्सीन ये एक नया अभियान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी।
0: अब जैसे आपने बताया कि राजस्थान के जिला अजमेर से इस अभियान की शुरुआत हो गई, तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से अपने जिले में किया जा रहा है?
2: 45 जिले ऐसे थे जहां पे पहले से ही MR अभियान चालू था। हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर भी MR अभियान चल रहा था। उसके बाद अब हम इस अभियान को अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। HPV वैक्सीनेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे जिले में चालू हो चुकी हैं, जहाँ पर सभी ब्लॉक के चिकित्सा अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा वहाँ के अन्य कर्मी जिनका अहम रोल इस अभियान में होना है तथा जो हमारे बेसलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
0: तो ये तो बात रही कि क्या कुछ इस अभियान के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इस अभियान के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, जागरूकता अभियान जो है हमारे सभी अर्बन PSC और CSCs के तहत जितने हमारे बेसलाइन कर्मचारी हैं जैसे आशा, ANM, आंगनवाड़ी, इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है क्योंकि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1% ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 14 वर्ष होगी, उसका सर्वे किया जा रहा है।
0: इस HPV वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता होना आवश्यक है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन कितनी हो रहेगी, कितनी उम्र के बच्चों को हम लगाएंगे, किस किस को हम लगाएंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है तथा किस किस को नहीं लगाया जाना है ये हमें अपनी टीम को बताना बड़ा आवश्यक है तथा कहां कहां हमें टीकाकरण कराना है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटीज को ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: ये तो बात रही कि जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपके द्वारा जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उसके बारे में। अब बात आती है सर कि इस HPV वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन लगाई जाए।
2: देखिए, हमारे इस अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गार्डेसिल 4 वैक्सीन को चुना गया है, जिसके अंदर 4 क्वाड्रोवेलेंट होते हैं, 6, 11, 16 और 18। हमारे देश में यह देखा गया है कि 16 और 18 से ही इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए इस वैक्सीन को चुना गया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है, वायल मिलेगी और एक ही डोज लगेगी। ये लाभार्थी के लेफ्ट ऊपरी हिस्से पर लगाई जाएगी और मसल्स के अंदर ये टीका लगेगा।
0: तो अपने जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ कहाँ पर होगा?
2: देखिए, इसके लिए ऐसी संस्थाओं को चुनना है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, डॉक्टर्स अवेलेबल हों। तो ऐसी हमारी 9 जगह हमने चुनी है। सबसे पहले हमने लिया है अपना जिला अस्पताल, उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स और PGICH, जहाँ पर 24 घंटे सेवाएं दी जाती हैं, तथा जो रूरल एरियाज हैं वहाँ हमारी 4 CSC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें लिया है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं इस प्रकार से। और 2 हमारी अर्बन CSCs हैं, एक बादलपुर में और एक भंगेल में। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 9 जगह चुनी गई हैं जिन पर टीकाकरण चालू होगा।
0: सर, HPV वैक्सीनेशन अभियान में जो हमारी आशा बहनें या ANM NG आंगनबाड़ी, इनका भी कुछ योगदान रहेगा?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए इन लोगों के बिना तो हमारा कोई भी अभियान सफल हो ही नहीं सकता है। देखिए, एक टीम के साथ 4 सदस्य होंगे, एक पहला टीकाकर्मी, एक दूसरा जो बच्चियां आएंगी उनकी एज वेरीफाई करने के लिए, तथा एक कंसेंट को वेरीफाई करने के लिए एक वेरीफायर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा एक मोबिलाइजर की और एक वॉलेंटियर। इसमें हमारी आशा बहन जी, आंगनवाड़ी, कुछ वॉलेंटियर्स, स्टाफ नर्स और हमारी ANM, सभी का अहम योगदान रहेगा।
0: बिल्कुल सर, अब जिन लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा उन तक सूचना कैसे पहुंचाई जाएगी?
2: देखिए, जिस प्रकार से हमारा कोविड वैक्सीनेशन हुआ था, पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो UWIN पोर्टल है, उस पर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उस पे डेट वगैरह सब आ जाएगी, आप उस नियत स्थान पर पहुंच करके टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता या करना नहीं आता है तो भी हमारे 9 सेंटर्स में से जो भी उनके नज़दीक होगा वहां पर पहुंचकर अपना एज प्रूफ दिखाना होगा, और जिस बच्ची का 14वां बर्थडे मनाया जा चुका होगा लेकिन 15वां बर्थडे अभी उसने नहीं मनाया होगा, उसको देखते हुए उन्हें रजिस्टर कर लिया जाएगा और अपने माँ बाप के मोबाइल नंबर पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे कि हमें कंसेंट मिल सके कि वो अपनी बच्ची को ये HPV वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर मोबाइल नहीं होगा तो इसके लिए सरकार की तरफ से ये भी व्यवस्था रहेगी कि वो लिखित में भी अपना कंसेंट दे, लेकिन माँ या पिताजी को इस सेंटर पर आना होगा।
0: सर, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से आप हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: देखिए, रेडियो ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा साधन है। रेडियो के द्वारा सभी तक बहुत ही आसानी से सारे हमारे जितने मैसेजेस हैं वो पहुंचते हैं, और HPV वैक्सीनेशन एक अहम वैक्सीनेशन होने वाला है, क्योंकि हेपेटोपेपिलोमा वायरस के द्वारा या सर्वाइकल कैंसर से लगभग 74,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं और इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण कराना आवश्यक है और सभी लगवाएं।
0: बिल्कुल सर, HPV वैक्सीनेशन के बारे में, इस अभियान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने आज सुनो शारदा रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उन तक पहुंचाई। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है, जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं, या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें, जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आपको समसामयिक जानकारी मिलती रहे और सरकार की जो योजना है आपके लिए, हमारे ग्रामीण बहन भाइयों के लिए, उनका वो लाभ उठा पाएं। और लाभ तभी मिलेगा जब आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि वीवीजी रामजी ग्रामीण मिशन की। ये केंद्र सरकार की एक नई पहल है जो मुख्य रूप से मनरेगा का आधुनिक और उन्नत रूप है। किसान मित्रों, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही पारदर्शी भुगतान और स्थायी आजीविका प्रदान करना भी इसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। देश के सभी गांव गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास और जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में अब एक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन थी। वीवीजी रामजी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी। ये गरीबों, खेतीहार, मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांव के विकास को मजबूती मिलेगी। किसान मित्रों, पहले आपको कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीवीजी रामजी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुआई और कटाई के समय, पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इस योजना में यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार तय की गई दरों और शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता के परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी। इसी तरह काम पूरा कर लेने के बाद भी यदि किसी कारणवश मजदूर को उसकी निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, तो मुआवजे के तहत उसे विलंबित मजदूरी के रूप में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही वीवीजी रामजी मिशन की। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।

किसान भाई सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे किसान बहन भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं तो वो ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो हम बात खेती में तकनीक की कर रहे हैं, तो आजकल एक तकनीक का इस्तेमाल भी हमारे किसान बहन भाई खूब कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस खेती कर रहे हैं, जो एक ऐसी तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों के मौसम में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तकनीक से खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है और ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे किसानों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्र, आप भी पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के माध्यम से खेती करके नुकसान से बच सकते हैं और खेती से फायदा उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

किसान मित्रों, अभी आप रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे रविंद्र खालोर और किस्सा था द्रौपदी चीर हरण का। किसान मित्रों, आप सभी चाहते हैं कि आपके खेत से अच्छा फसल उत्पादन हो, लेकिन उसके लिए खेत की मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी आवश्यक है। अब उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए तो मिट्टी की जांच की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो अंदाजे से तो हमारे किसान भाई कभी कोई खाद लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो भी लगा रहे हैं, जरूरत है वो भी लगा रहे हैं, लेकिन मिट्टी में सही मात्रा में खाद पहुंचे, सही पोषक तत्व पहुंचे और वो भी निश्चित मात्रा में, तो इसका पता तो लगेगा मिट्टी की जांच कराने के बाद। तो इसके लिए आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले और गुणवत्तापूर्ण पैदावार मिले। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चल जाता है कि भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है। तो किसान मित्रों, आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अपने खेत से अच्छा और बेहतर उत्पादन मिल सके। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं सुनील चौहान।

सुनील चौहान द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है, टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा, देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम,

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते

0: हमारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
1: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है, ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: मैंने कहा है ना, मुझे शादी नहीं करनी है माँ। अभी माँ, मैंने पहले ही आपको कहा है कि मुझे पहले अपने पैरों पर स्टैंड होने दीजिए, फिर शादी कर लूंगी ना।
1: तो क्या अभी तू सर केवल खड़ी है क्या? पांवों पे तो खड़ी है।
0: माँ माँ माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो?
1: क्या माँ माँ माँ, 26 साल की हो गई है तू? अरे तेरे साथ की सभी की शादी हो गई है, मेरे मरने के बाद शादी करेगी क्या?
0: माँ प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और ये इमोशनल अत्याचार मुझ पे मत किया करो माँ, मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ।
1: हाँ हाँ, अब मैं तेरी माँ जो तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ कि तुझे अत्याचार लग रहा है। जब भी शादी की बात करूँ हमेशा तू यही कहती है।
0: माँ

0: दीपक।
1: हाय पायल, कैसी हो?
0: नहीं हूँ ठीक यार, परेशान हो गई हूँ।
1: क्यों, क्या परेशानी चल रही है?
0: यार माँ फिर से शादी के पीछे पड़ी हुई है, और तुझे तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं अपने पैर पर स्टैंड हो जाऊँ तो फिर मैं शादी के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है।
1: अरे यार, सही तो कह रही है तेरी माँ, कब शादी होगी, फिर कब बच्चे होंगे। हम दोनों साथ में कॉलेज गए थे और हमारे सभी दोस्त की शादी हो गई है, पता है तुम्हें? अरे बताऊँ किस किस की शादी हो गई है? नेहा, प्रीति, रीता, पल्लवी, देख ले मेरी भी तो शादी हो गई है ना, और एक न एक दिन तो शादी करनी ही होगी यार पायल।
0: यार तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं करनी है, मुझे अभी अपना करियर बनाना है। चल ठीक है, मूड उदास कर दिया तूने मेरा, बाद में बात करूंगी तुझसे।
2: बस राधा, बहुत हो गया, बेटी हाथों से निकल रही है, इसके बाद कोई लड़का नहीं मिलेगा, तेरे साथ ही रहने वाली है क्या?
0: माँ, माँ मैं आ गई हूँ।
3: आ गई तो? तेरे अंकल का फोन आया था, क्यों सबसे मुझे बातें सुनाने को लगी है? 26 साल की हो गई और कब शादी होगी तेरी, और कब बच्चे होंगे? शादी और बच्चे में गैप होना जरूरी है, ये बात क्यों नहीं समझती तू? नहीं तो बाद में मुसीबत हो जाती है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा अच्छा और बुरा समझती हूँ, और अगर कोई है तेरी लाइफ में तो मुझे बता दे।
0: ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती।
3: बस तेरा फिर शुरू हो गया? ये लड़का देख, दीदी ने भेजा है, और कितना अच्छा लड़का है, और फैमिली भी अच्छी है, और अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए तुझे?
0: माँ आपको पता है ना इसको कैसी लड़की चाहिए, जो घर बैठकर इसके लिए रोटी बनाती रहे।
3: तो क्या हो गया, घर संभालना तो लड़की का काम होता है।
0: और मेरे काम का क्या, मेरे करियर का क्या? माँ आप क्यों नहीं समझती है, आपसे तो बात करना बेकार है। पता नहीं मैं क्यों बार बार आपके साथ बात करके टाइम वेस्ट करती हूँ, नहीं करनी है मुझे बात।
3: करियर, ये पता नहीं आज की लड़कियों को करियर करियर करने की क्या आदत हो गई है, पता नहीं कौन सी कंपनी की सीईओ बन जाएंगी जाके, बस करियर ही बनाना है, शादीवादी नहीं करनी है इन लड़कियों को।
0: क्या है माँ, शादी के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने नहीं आती आपको क्या?
3: ताना देने के अलावा कुछ नहीं आता तेरे को क्या?
0: माँ आप छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती हैं? कोई फायदा नहीं है आपसे बात करने का।

0: माँ माँ माँ क्या हुआ है? क्यों नहीं बात कर रही हो मुझसे? मेरी प्यारी माँ।
1: छोड़ मुझे, पीछे हो जा।
0: माँ क्यों नाराज हो? मुझे थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं दे देते? शादी करने से सब ठीक नहीं होता, और आपको पता है शादी करके क्या, अगर वो भी पापा की तरह निकला तो मेरी जिंदगी आपकी तरह तवा। I'm sorry माँ, आपको बुरा लगा ना मेरी वजह से? मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो।
1: नहीं तो ठीक कह रही है बेटा, मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो रही है। तेरे पापा तेरे पैदा होने पर मुझे छोड़ गए थे, इसकी वजह भी तो सिर्फ मैं ही हूँ। और हाँ, तभी तो तेरा शादी से विश्वास उठ गया है। तेरी बुआ शायद ठीक ही कहती है, मेरे पास्ट की सजा शायद तुझे मिल रही है।
0: नहीं माँ, जो आपकी पास्ट में हुआ है उसकी गलती आपकी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माँ आप नहीं समझती अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है।
1: हाँ बेटा, लेकिन तू जानती है ना कि शादी भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है।
0: माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट। मैं जानती हूँ आपने कितने एफर्ट्स के साथ मुझे बड़ा किया है और इस मुकाम तक पहुँचाया है, और माँ आप एक खुद औरत हैं, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं? नानी ने आपको पराया धन कहा, और इसके बाद आज आप मुझे पराया धन कह रही हैं। कल को मैं किसी और के घर जाऊंगी तो वो भी तो मुझे पराया धन कहेंगे, तो फिर

0: मेरा घर कौन सा है माँ? एक औरत का घर कौन सा है? आप ही बताइए। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ माँ अभी। प्लीज आप इस बात को समझिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज।
1: हाँ रूपा। हाँ हाँ की है बात, पर देख यार, मेरी बेटी कोई गाय बकरी तो नहीं है कि हर किसी के साथ बांध दूँ उसको। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी आशा बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे पता है आपको चिंता है, पर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। आप अपना घर संभालिए और मैं अपना संभालती हूँ।
2: थैंक यू सो मच माँ, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, आई लव यू।
1: मेरी लाडली बेटी, मैं अपनी बच्ची की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। तुझे जो अच्छा लगता है तू वैसा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो दो महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी, जानती हो ना अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गए हो तो ये लगता है कि यहाँ

प्रकृति मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि कृत्रिम या बनावटी बारिश कुछ रसायनों की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है। आज मौसम में परिवर्तन करने से ज्यादा जरूरी है महासागरों और वायुमंडल प्रणाली को दूषित होने से बचाना, क्योंकि तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि भयानक तबाही ला सकती है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु।

0: यहाँ भी नहीं है, उधर देखती हूँ, अरे यहाँ भी नहीं है। मानव, ओ तू यहाँ बैठा है और मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढाई, और तू यहाँ पिछवाड़े वाले बगीचे में अकेला बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा था? अरे बता ना क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: कुछ नहीं दीदी।
0: अरे मानव क्या हुआ, तू तो बड़ा दुखी दिख रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ मेरे प्यारे भाई, चल अब बता क्या हुआ।
1: दीदी वो जो दो पेड़ मैंने बगीचे में लगाए थे ना।
0: अच्छा अच्छा वो ऑर्किड का पौधा और वो सेब का।
1: हाँ हाँ वही, वो दोनों मर गए।
0: ओहो तो ये बात है। अरे बुद्धू तुझे कितना मना किया था कि ये पौधे मत खरीद, ये अपने यहाँ नहीं चलेंगे, पर तूने तो वो रोना पीटना मचाया कि आखिर पापा को तुझे ये पौधे खरीद के देने ही पड़े।
1: लेकिन दीदी मैं कितनी मेहनत से उनको यहाँ तक लेके आया था और कितने प्यार से मैंने उन्हें लगाया था।
0: पर मानव सेब और ऑर्किड के पौधे हमारे यहाँ नहीं पनप सकते।
1: क्यों
0: नहीं पनप सकते, कह दिया ना।
1: लेकिन क्यों?
0: इसलिए कि अगर पनप सकते होते तो सेब दूसरे राज्यों से क्यों मंगाए जाते, अपने यहाँ क्यों ना पैदा होते और आलू के भाव बिकते।
1: मगर हमारे यहाँ सेब क्यों नहीं हो सकता?
2: क्या नहीं हो सकता मानव?
0: अरे पापा आप आपसे इसने जिद करके वहाँ श्रीनगर में सेब का जो पौधा खरीदवाया था ना, वो यहाँ मर गया, उसी पर मुंह बनाकर बैठा है ये मानव।
2: अरे बेटा उसे तो मरना ही था, वो यहाँ कैसे पनप सकता था?
1: वो क्यों पापा?
2: बेटा क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु वैसी नहीं है जैसी कि सेब के पेड़ या ऑर्किड के पौधे को पनपने के लिए चाहिए।
1: ये जलवायु है क्या?
0: वही मौसम, जहाँ सेब होते हैं वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती।
3: हाँ। नहीं नहीं नहीं सृष्टि, जलवायु और मौसम दोनों एक नहीं है।
0: वो क्यों विवेक भैया?
3: अरे सृष्टि देखो, आज जैसे सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, कल धूप निकल आए तो मौसम बदल जाएगा, इस तरह मौसम बदलता रहता है।
0: अच्छा हमारे देश का मौसम कुछ महीनों बाद बदल जाता है, सर्दी के बाद गर्मी फिर बरसात।
3: हाँ बिल्कुल, मौसम महीनों में क्या एक दिन में ही कई बार बदल सकता है, जबकि कहीं कहीं की जलवायु को बदलने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं।
1: लाखों साल?
0: इसका मतलब हम जो टीवी रेडियो या समाचार पत्रों में पढ़ते सुनते हैं वो मौसम के बारे में होता है, जलवायु के बारे में नहीं।
3: हाँ क्योंकि जलवायु इतनी आसानी से परिवर्तित होती नहीं।
0: पर जलवायु से जीवों में तो परिवर्तन आ सकते हैं, है ना विवेक भैया?
3: हाँ यही तो बात है, मौसम से हम निपट सकते हैं।
1: मतलब?
3: मतलब मौसम वहाँ के जीवधारियों के रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि को भी प्रभावित कर सकता है।
2: और जलवायु के बारे में भी तो बताओ।
3: आप तो जानते ही हैं, जलवायु तो जीवधारियों के पूरे वंश को प्रभावित कर सकती है।
2: कौन जीवधारी कहाँ पनपेगा ये किसी जगह की जलवायु ही निर्धारित करती है।
3: अब मानव तुम डायनासोरों को तो जानते ही हो।
1: वही भारी भरकम शरीरों वाले दानव जैसे जी।
3: हाँ, वो एक समय धरती पर राज किया करते थे और आज उनका नामो निशान तक नहीं बचा है। जानते हो क्यों?
1: क्यों?
3: किसी बड़ी घटना से पृथ्वी की जलवायु में अचानक परिवर्तन आया, डायनासोर जलवायु के इस परिवर्तन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और मिट गए।
0: तब फिर ये जलवायु है क्या?
4: ये तो सबसे अच्छी तरह तुम्हें बेमौसम आया ये मौसमी व्यक्ति ही बता सकता है। हाँ भाई मैं देखो सूर्य प्रकाश, आज तो मेरा दूध वाला भी आया है और मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा भी नहीं हुआ। मैं तो बस
2: देख देख देख देख पवन, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, फिर तो सफाई का है कि दे रहा है। और अब आया है तो चाय पीकर तो तू जाएगा ही है।
4: अरे भाई अब तुम इतना कह रहे हो तो फिर पीनी ही पड़ेगी।
2: हाँ हाँ ये एहसान भी मुझ पर ही सही है। अरे वसुधा सुनती हो?
5: क्या है?
2: अरे पवन आया है, मौसम विभाग वाला अपना पड़ोसी।
5: चाय तो ये पीकर ही जाएगा है ना।
6: इस उम्र में भी आप लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा आता है।
4: इस उम्र में क्या कह दिया, ये तो आपने सारा कबाड़ा ही कर दिया। अरे भाई मैं और सूर्य प्रकाश तो अभी जवान है।
2: क्या बात कर दी तूने तो भाई, फिर तो पकौड़े भी खिलाएंगे।
4: क्या बात है? तो भाभी
6: अच्छा अच्छा चलिए जवान लोग अंदर।

0: हाँ तो सूर्य प्रकाश।
1: पवन अंकल आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं।
0: अरे तो भाई अभी सब लोगों को बैठ तो जाने दो। मानव बेटा तू इधर आ मेरे पास, और विवेक तू उस मानव वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जा। हाँ तो सृष्टि,
1: जलवायु।
0: हाँ जलवायु, इस क्षेत्र में आम तौर पर वातावरण की क्या स्थिति रहती है, तापक्रम कैसा रहता है, पानी कितना और कब बरसता है, हवाएं कैसी और किस दिशा में चलती हैं, धूप वहाँ कितनी तेज होती है और दिन में कितने घंटे तक रहती है, बर्फ पड़ती है कि नहीं, और अगर पड़ती है तो कितने दिन तक उस क्षेत्र को ढके रहती है, इस सब को काफी लंबे समय तक देखकर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसे कहते हैं जलवायु।
2: पर अंकल लंबे समय तक।
0: हाँ विवेक, मानकों के आधार पर 35 वर्ष के मौसम संबंधी इन आंकड़ों का अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसे मानते हैं वहाँ की जलवायु।
1: 35 साल।
0: हाँ मानव, काफी लंबा समय है ये, है ना। अतः अब कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि 10 साल तक के मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके भी किसी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है।
1: अच्छा। मतलब ये कि किसी जगह के लंबे समय का औसत मौसम ही उस जगह की जलवायु कहलाता है।
0: अब तुम ठीक समझे सृष्टि।
3: और इसका मतलब ये कि किसी जगह की जलवायु बहुत सारे परिवर्तनों से मिलकर बनती है।
0: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, ये बात तो है भाई, बहुत सारे कारक मिलकर किसी जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं।
2: अंकल बहुत सारे कारक, जैसे
0: जैसे तुम्हारे पापा, मतलब कि सूर्य को ही ले लो।
4: जी नहीं पवन जी, सूर्य को नहीं, अभी तो इस चाय को ही ले लीजिए।
0: अरे वाह वसुधा भाभी, वाह यू आर ग्रेट भाभी।
3: देखा देखा देखा बच्चों, वसुधा की चाय ने कैसे बदल दिया पवन की बातों का मौसम।
0: अरे भाई मौसम ही तो बदला है ना सूर्य प्रकाश, जलवायु नहीं।
3: अरे जलवायु भी बदल जाएगी जब वसुधा पकौड़ियाँ खिलाएगी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि मौसम में जल्दी जल्दी होने वाले इन परिवर्तनों का जलवायु पर कोई असर नहीं पड़ता भाई, रोजमर्रा की घटनाओं से मौसम बदलते हैं, जलवायु नहीं। अभी चाय पी जाए।
3: तुम भी लो, लो, लो, लो, लो।
0: हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं,
1: सूर्य।
0: सूर्य सूर्य ही सारी पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
3: हाँ इसीलिए किसी जगह की जलवायु के निर्माण में सूर्य प्रकाश, नहीं क्या,
0: सूर्य
3: सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है।
0: सूर्य प्रकाश, सूर्य अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है भाई, हमें तो उसका 1/2 अरबवां भाग ही मिल पाता है, फिर भी बच्चों जानते हो ये कितनी होती है?
1: कितनी?
0: 230 खरब अश्व शक्ति प्रति मिनट।
1: 230 खरब अश्व शक्ति।
0: हाँ अगर हम इस सारी ऊर्जा को प्रयोग कर सकें तो 1 मिनट में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से पृथ्वी वासियों का 2 बरस तक का काम चल सकता है।
2: अंकल मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली इस ऊर्जा में अगर 13% की भी कमी हो जाए तो सारी पृथ्वी करीब 1 मील मोटी बर्फ की तह के नीचे दब सकती है।
1: और अगर इस ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए तो
2: सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में 30% की बढ़त से ही पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु जलकर राख बन सकती है।
0: करीब करीब ठीक ही कह रहे हो तुम विवेक, ये सूर्य पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में और इसे हमारे रहने लायक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
3: भाई, तभी तो लोग हमें देवता, मतलब सूर्य को देवता मानते हैं।
1: पर अंकल सूर्य से तो ये गर्मी, मेरा मतलब ऊर्जा, हमें धूप के रूप में मिलती है ना।
0: हाँ मानव बेटा, अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सूर्य से ये ऊर्जा हमें 3 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। विवेक तुम जानते हो कि कौन सी?
2: हाँ हाँ अंकल जानता हूँ, एक तो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट तरंगे, दूसरे दिखाई देने वाले प्रकाश की तरंगों के रूप में, और तीसरे अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगों के रूप में।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक, पर जैसे ही ये तरंगे वायुमंडल की

0: ऊपरी सतह तक पहुंचती हैं, तो इनका लगभग एक तिहाई हिस्सा बादलों, सूक्ष्म धूल कणों और गैसों के अणुओं द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है।
1: सत्यानाश, कितनी सारी ऊर्जा बेकार में गई। नहीं तो
2: नहीं मानव, अगर ये ऊर्जा वापस परावर्तित ना होती तो पृथ्वी पर जीवन का हर रूप जलकर राख हो गया होता।
1: तुम्हें कैसे मालूम दीदी?
2: अरे बुद्धू, अभी विवेक भैया ने नहीं बताया था कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा में अगर 30% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो पृथ्वी का हर जीवित प्राणी जलकर राख हो जाएगा।
3: देखा पवन, सृष्टि बेटी की याददाश्त।
0: सृष्टि बेटा, जितनी भी ऊर्जा अब वायुमंडल से गुजरती है उसका करीब 15% हिस्सा वायुमंडल की ओजोन, धूल कणों, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा सोख लिया जाता है।
3: हाँ, और इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है।
0: क्या खूब कही भाई, हिसाब ही तो तुम पक्के।
3: वो तो
0: करीब 51% ऊर्जा ही इस तरह धरती की सतह तक पहुंच पाती है।
4: और यही ऊर्जा प्रभावित करती है जलवायु को, है ना?
0: हाँ विवेक, जब सौर ऊर्जा की ये किरणें पृथ्वी की सतह पर चट्टान, रेत, मिट्टी और पानी आदि से टकराती है ना, तो ये उस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती हैं, जिससे हमें मिलती है गर्मी या ऊष्मा।
2: और इस ऊष्मा से नियंत्रित होती है पृथ्वी के किसी भी हिस्से की जलवायु, है ना पवन अंकल?
1: अंकल, आपकी बातों से तो ये अनुमान लगता है कि सूरज धरती को हर जगह एक सी ऊर्जा देता है, तब धरती के अलग अलग हिस्सों की जलवायु अलग अलग कैसे हो जाती है?
0: दरअसल बेटा, ऐसा धरती की अपनी खूबियों की वजह से होता है।
2: धरती की खूबियां वो कौन सी?
0: अच्छा बेटा, एक बात बताओ, हमारी धरती का आकार कैसा है?
1: गोल, पर ध्रुवों पर थोड़ा चपटा।
0: अरे, इसीलिए धरती की आकृति नाशपाती जैसी हो जाती है। इस आकृति के कारण सूरज की किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती।
2: वो कैसे अंकल?
0: देखो सृष्टि, पृथ्वी की आकृति के कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है
4: और इससे भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है।
0: हाँ विवेक, अब हम जैसे जैसे मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस जगह पर पड़ने वाली किरणों का कोण कम होता जाता है,
4: जिससे उस जगह पर इन किरणों की तीव्रता भी कम होती है।
0: बिल्कुल ठीक, अब ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते तो सूर्य की किरणों का कोण इतना कम हो जाता है कि वहां पर तापमान शून्य के आसपास हो जाता है।
4: वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनते ही ठंडे क्षेत्रों की हवाएं उस जगह को भरने के लिए चल पड़ती हैं, जिससे बीच के क्षेत्रों में भी हवाएं बहने लगती हैं।
2: इस प्रकार तो हवाएं भी किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती होंगी।
0: भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, पर पृथ्वी का घूमना भी हवाओं की दिशा को बदल देता है। इसीलिए आमतौर पर ये भूमंडलीय हवाएं पूर्व पश्चिम दिशा में बहती हैं, ना कि उत्तर दक्षिण दिशा में।
2: अच्छा पवन अंकल, एक बार हम लोग चेन्नई गए थे, भयंकर गर्मी थी वहाँ। फिर हम लोग वहाँ से ऊटी गए, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि बस मजा आ गया। अब ये दोनों जगह तो भूमध्य रेखा से करीब करीब एक सी ही दूरी पर है।
3: पवन, सृष्टि शायद ये पूछना चाहती है कि एक ही जगह पर पहाड़ी भाग की जलवायु अलग हो जाती है और मैदानी भाग की अलग, वो कैसे?
0: देखो सृष्टि, सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पड़ती है उसका काफी भाग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर सतह के पास के वायुमंडल में जाकर उसे गर्म रखता है। पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाती।
1: वो क्यों अंकल?
0: देखो मानव, बादल और धूल कण जो कि वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होते हैं, वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती इस ऊर्जा को फिर धरती पर परावर्तित कर देते हैं
4: और इससे सौर ऊर्जा की ये मात्रा पर्वतों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और वहां का वातावरण ठंडा रहता है।
0: भाई पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है ना, तो ये भी अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का 70-90% भाग वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है।
4: और पहाड़ों पर वायु काफी विरल होती है, इसमें उन धूल कणों की मात्रा भी काफी कम होती है जो इस बाहर जाती सौर ऊर्जा को पुनः वापस पृथ्वी की सतह की तरफ परावर्तित करते हैं।
0: सो इन सब घटनाओं के सम्मिलित असर की वजह से पहाड़ों पर मैदानी भागों की अपेक्षा तापमान काफी कम रहता है। समझ गए ना बच्चों?
2: जी
0: अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ।
3: अरे अरे बैठो ना पवन, जल्दी क्या है?
0: अरे नहीं नहीं सूर्य प्रकाश, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी से कहकर आया था कि मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करके यूं आया। वो मेरे साथ बाजार जाने के लिए तैयार होकर बैठी होगी और मैं यहाँ बातों बातों में सब भूल गया।
2: पर पवन अंकल वो
0: ना बेटा, अब कुछ नहीं, मैं चलूं वरना तुम्हारी आंटी मेरे घर पहुँचते मुझे कच्चा चबा जाएंगी।
3: अरे क्यों भाई, क्या घर में कुकिंग गैस खत्म हो गई है?
0: गगन,
5: हाँ?
0: आज के डेटा देख लिया तुमने?
5: हाँ पवन, पर क्यों डेटा के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो?
0: वो इसलिए गगन कि आज शर्मा जी नहीं आए हैं, आज के मौसम का पूर्वानुमान हमें ही फीड करना है।
5: ओ, अच्छा।
6: नमस्ते पवन अंकल।
0: अरे विवेक, आज ऑफिस में कैसे?
2: बस अंकल। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
0: अरे सृष्टि, मानव, तुम भी? नमस्ते नमस्ते।
5: आओ भैया, कैसे हैं तुम लोग?
2: उस दिन हम लोग जलवायु की बात ही कर रहे थे कि कल मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला करने को। जानते हैं किस विषय पर?
0: क्या, जलवायु पर?
2: हाँ, मैंने भी जानबूझकर ले लिया, सोचा आप तो हैं ही, सो मदद कर देंगे, और गगन अंकल भी।
5: क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई।
2: इसीलिए तो मैं विवेक भैया के साथ यहाँ पर आई हूँ। और रहा मानव का सवाल, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर मानव चिपक ही जाता है।
0: अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आओ बैठो तो सही, खड़े क्यों?
5: अब बताओ, तुम्हें जानना क्या है जलवायु के बारे में?
2: ये तो ठीक से नहीं पता गगन अंकल कि क्या जानना है, पर पवन अंकल ने हमें बताया था कि पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में सूर्य और खुद पृथ्वी का क्या योगदान है।
6: हाँ अंकल, बाकी और भी तो बहुत से कारण होंगे जो किसी जगह की जलवायु को नियंत्रित करते होंगे।
5: हाँ विवेक, है ना, सूर्य और धरती की विशेषताओं के अलावा सागर और पहाड़ भी पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पवन?
0: हाँ गगन, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग में तो सागर ही है। धरती पर पाए जाने वाले पानी का 97% पानी तो इन्हीं सागरों में भरा है।
6: सागरों से ही तो वो जलवाष्प बनती है जो जमीन पर जाकर बारिश करती है ना।
5: क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का 3/4 भाग तो सागरों के ऊपर ही स्थित है, अतः इसका जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
0: देखो बेटा, सौर ऊर्जा के प्रभाव से समुद्र के पानी को गर्म होने में भी काफी समय लगता है,
5: और इसीलिए समुद्र के तटों पर बसे क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन काफी हल्के होते हैं।
2: मतलब?
0: देखो बेटा, यहाँ दिन रात और गर्मी सर्दी के तापक्रमों में काफी कम अंतर होता है।
2: हाँ, जैसे मुंबई में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी, बस थोड़ी बारिश ज्यादा होती है।
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और वो भी इन्हीं सागरों के कारण।
0: इसके अलावा समुद्र के अंदर ठंडी और गर्म पानी की जलधाराएं बहती हैं। ध्रुवीय समुद्रों से ठंडे पानी की जलधाराएं सागर की तली के निकट बहती हुई इस ठंडे पानी को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं।
6: अंकल, अटलांटिक महासागर की तरफ से गर्म पानी की एक धारा उत्तर की ओर भी तो बहती है।
5: हाँ विवेक, इसमें मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी की धारा भी मिलती है, तब इसे खाड़ी प्रवाह कहते हैं।
6: अच्छा।
0: देखो विवेक, गर्म पानी की इस समुद्री धारा के चलते पश्चिमी यूरोप के सागर तट पर बसे इलाके जिन्हें भूमध्य रेखा की दूरी के चलते एकदम ठंडा होना चाहिए था, उनकी जलवायु थोड़ी गर्म होकर अविश्वसनीय रूप से सुहावनी हो जाती है।
2: अच्छा। मतलब ये कि समुद्र के अंदर बहने वाली ये गर्म और ठंडे पानी की धाराएं भी समुद्र तटीय इलाकों की जलवायु को बदल देती हैं।
5: और सागरों के अलावा पहाड़ भी किसी जगह की जलवायु को गंभीरता से प्रभावित करते हैं।
2: हाँ, उस दिन पवन अंकल ने बताया था कि क्यों पहाड़ों पर मौसम ठंडा रहता है।
5: हाँ मानव, इसके अलावा पर्वत जलवायु विभाजक का काम भी करते हैं।
2: जलवायु विभाजक, वो कैसे पवन अंकल?
0: देखो सृष्टि, मान लो हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो जाएं, तो इसके दोनों तरफ ढलान होगी, है ना? एक तरफ की ढलान की तरफ से हवा आती है, इसे विंडवर्ड ढाल कहते हैं,
5: और इसके दूसरी ओर की ढलान को प्रतिपवन या लीवर ढाल कहते हैं।
0: जब समुद्री तल से ठंडी और नम हवा बहते बहते इन पर्वतों तक पहुंचती है ना, तो रास्ते में पर्वत पर जाने पर ये उससे टकराकर और ऊपर उठती है, जिससे ठंडी होकर यह पर्वत के इसी तरफ अपने जलवाष्प का खजाना खाली कर जाती है,
2: यानी कि बरस जाती है।
0: हाँ मानव, जब पर्वत की चोटी के ऊपर से होकर ये प्रतिपवन ढाल की ओर पहुंचती है, तो इसमें नमी बची ही नहीं होती, इसलिए प्रतिपवन ढाल पर बसे इलाके सूखे रह जाते हैं।
2: मतलब पर्वत के एक तरफ खूब बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखा।
0: हाँ सृष्टि, इसीलिए तो गगन कह रहा था के पर्वत जलवायु विभाजक का काम करते हैं।
5: अब हमारे हिमालय को ही ले लो, इसके कारण गंगा यमुना के कछार में खूब बारिश होती है, उत्तर की नदियों को पानी मिलता है, खुद हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमने के लिए नमी मिलती है।
0: और इसकी प्रतिपवन ढाल पर है तिब्बत, जहाँ काफी कम ही बारिश हो पाती है।
5: दूसरे, ये ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में घुसने नहीं देता, जिससे हमारे यहाँ की पहाड़ी जलवायु सुखद हो जाती है और तिब्बत की इतनी कठिन।
6: अच्छा गगन अंकल, वनों की भी तो किसी जगह की जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
5: हाँ विवेक, वनों की ही क्या, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी वनस्पतियों की पूरे विश्व की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: अच्छा। वो कैसे गगन अंकल?
5: देखो सृष्टि, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाते हैं। जानते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या असर डालती है?
2: हाँ, ये तो ग्रीन हाउस गैसों में से एक है।
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, ये उन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है, पर पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल से निकलने से रोक देती है।
2: और इससे वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है, इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: शाबाश मानव, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब सोचो अगर वन इस कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी खपत ना करें तो
2: वातावरण का तापक्रम बढ़ जाएगा,
5: और वो भी इतना कि रहना मुश्किल हो जाए, पहाड़ों पर की बर्फ पिघल जाए, सागरों का स्तर बढ़ जाए, तट पर बसे शहर सागर में डूब जाएं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़े कि सांस लेना कठिन हो जाए।
0: इसके अलावा जंगल एक और परिवर्तन लाते हैं अपने आसपास की जलवायु में।
2: वो क्या पवन अंकल?
6: मैं बताऊं अंकल, पौधे और अन्य वनस्पतियां भूमि से पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में छोड़ते रहते हैं, जिससे वनों की जलवायु आर्द्र या नम होती है। दूसरे, ये उस स्थान की बारिश को भी तो प्रभावित करते हैं।
5: और जलवायु के दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्र को वुडलैंड एरिया कहते हैं।
2: वुडलैंड एरिया?
5: हाँ, इन क्षेत्रों की एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है।
2: विशेष प्रकार के क्यों?
0: वो इसलिए मानव कि इस प्रकार के वनों में प्रकाश की, खासकर पराबैंगनी विकिरण की बहुत कम मात्रा जमीन तक पहुंच पाती है। बहुत घने जंगलों में तो सौर ऊर्जा का 1/10,000वां हिस्सा ही वनों की भूमि तक पहुंच पाता है।
5: हवाएं भी इन घने वनों में तेजी से नहीं बहती। दूसरे, ऐसे जंगलों की वनस्पतियों से इतनी नमी पैदा होती है जिससे वहाँ स्थानीय क्षेत्र में बारिश होती है।
0: पर ये बारिश भी पूरी की पूरी वनों की जमीन तक कहाँ पहुँच पाती है?
5: हाँ, बहुत सारी बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराती हैं और ये पानी वहाँ पत्तियों के ऊपर छितरा कर ऊपर ही रह जाता है, जहाँ से ये सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस तरह बहुत सारा पानी तो सूरज की गर्मी से ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है।
0: भाई, थोड़ा बहुत बारिश का पानी जो जमीन तक पहुंचता भी है, वो भी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां बहाकर नहीं ले जा पाता, वो वहीं पड़ी सड़ती रहती हैं,
5: जिनसे कभी कभी मीथेन भी बन जाती है।
6: और मीथेन भी तो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है।
5: इसीलिए वनों की जलवायु अलग तरह की होती है।
2: अलग तरह की कैसे गगन अंकल?
5: यहाँ दिन तो काफी ठंडा रहता है, पर रातें गर्म हो जाती हैं।
0: हेलो, हाँ हाँ भेज रहा हूँ। अरे अभी कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए। अरे पता है शर्मा जी आज नहीं है, मौसम की सूचना हमें ही फीड करनी है। ओके ओके ठीक है।
2: तो पवन अंकल अब हम चलते हैं।
6: हाँ अंकल, काफी समय ले लिया आपने।
2: हाँ, और इस चक्कर में आप अपना काम भी नहीं कर पाए।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अरे बस अभी बनाए देते हैं वेदर रिपोर्ट। और हाँ सृष्टि बेटा, प्रोजेक्ट में अगर कोई और दिक्कत हो तो फिर आ जाना।
2: जी
6: थैंक यू अंकल।
2: अच्छा अंकल,
6: बाय।
7: विवेक बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है इस समय रात को।
6: हाँ जी बाबा, देखता हूँ। अरे ताऊ जी आप आइए। प्रणाम। पापा ताऊ जी आए।
7: अरे दादा आप पाव लागू।
8: अरे खुश रहो सूरज, खुश रहो। कैसे हो?
7: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत लेट पहुँचे दादा, गांव से लेट चले थे क्या?
8: क्या करें, चले तो टाइम पर ही थे और रास्ते में मोटर खराब हुई।
7: अरे दद्दा अब ऐसा करो, थक गए होगे, हाथ पांव धो के खाना पीना खा लो फिर आराम करो।
8: अरे नहीं सूरज, अब खाना नहीं खाएंगे। अब तो हम आराम करेंगे। हाँ ऐसा करो, हमारी खटिया बाहर बिछवाए दो।
7: अरे बाहर दद्दा?
8: अरे गांव के आदमी है, अरे बाहर ही सोएंगे।
7: अच्छा जैसी मर्जी है आपकी दद्दा, ठीक है सुबह बात करेंगे दद्दा।
2: ताऊ
1: ताऊ जी आप ब्रश कर रहे हैं?
8: हाँ हाँ मालूम बिटुआ।
1: तो आपने अपने सामने नल क्यों खुला छोड़ रखा है?
8: ओ बिटुआ ब्रश के बाद खुला भी तो करना पड़ेगा ना।
1: अरे ताऊ जी तो तभी नल खोलिए ना, पहले से क्यों खोल रखा है?
8: हैं?
1: ताऊ जी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह आप हर रोज करीब एक बाल्टी पानी बिना बात के नाले में बहा देते हैं। यानी कि एक महीने में 30 बाल्टी और एक साल में 365 बाल्टी, और शहर का हर आदमी यही तो कर रहा है। इस तरह लाखों बाल्टी पानी हर साल आप लोग बेकार ही नाली में बहा देते हैं।
8: ये बात तो है माना बिटुआ,
1: और वो भी तब जब दुनिया की आधी आबादी को आज तक पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, फिर तो ये अपराध हुआ ना ताऊ जी।
8: अरे हाँ माना बिटुआ। अरे बिटुआ तू कितना समझदार हो गया है रे। तो ले मैं आज से प्रण करता हूँ कि पानी की इस तरह की बर्बादी कभी नहीं करूंगा।
1: ये हुई ना बात हमारे ताऊ जैसी।
9: धरती मेरी धरती अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी सुन रहे थे जलवायु।
10: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
11: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा, कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: चंचल
1: शीतल
0: शीतल
1: निर्मल
0: निर्मल
1: कोमल
0: कोमल

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि कृत्रिम या बनावटी बारिश कुछ रसायनों की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है। आज मौसम में परिवर्तन करने से ज्यादा जरूरी है महासागरों और वायुमंडल प्रणाली को दूषित होने से बचाना, क्योंकि तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि भयानक तबाही ला सकती है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु।

0: होगा ये, यहाँ भी नहीं है, उधर देखती हूँ, अरे यहाँ भी नहीं है। मानव ओ तू यहाँ बैठा है और मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढाई, और तू यहाँ पिछवाड़े वाले बगीचे में अकेला बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा था? अरे बता ना क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: कुछ नहीं दीदी।
0: अरे मानव क्या हुआ, तू तो बड़ा दुखी दिख रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ मेरे प्यारे भाई, चल अब बता क्या हुआ।
1: दीदी वो जो दो पेड़ मैंने बगीचे में लगाए थे ना।
0: अच्छा अच्छा, वो ऑर्किड का पौधा और वो सेब का?
1: हाँ हाँ वही, वो दोनों मर गए।
0: ओहो तो ये बात है। अरे बुद्धू तुझे कितना मना किया था कि ये पौधे मत खरीद, ये अपने यहाँ नहीं चलेंगे, पर तूने तो वो रोना पीटना मचाया कि आखिर पापा को तुझे ये पौधे खरीद के देने ही पड़े।
1: लेकिन दीदी मैं कितनी मेहनत से उनको यहाँ तक लेके आया था और कितने प्यार से मैंने उन्हें लगाया था।
0: पर मानव सेब और ऑर्किड के पौधे हमारे यहाँ नहीं पनप सकते।
1: क्यों
0: नहीं पनप सकते, कह दिया ना।
1: लेकिन क्यों?
0: इसलिए कि अगर पनप सकते होते तो सेब दूसरे राज्यों से क्यों मंगाए जाते, अपने यहाँ क्यों ना पैदा होते और आलू के भाव बिकते।
1: मगर हमारे यहाँ सेब क्यों नहीं हो सकता?
2: क्या नहीं हो सकता मानव?
0: अरे पापा आप आपसे इसने जिद करके वहाँ श्रीनगर में सेब का जो पौधा खरीदवाया था ना, वो यहाँ मर गया, उसी पर मुंह बनाकर बैठा है ये मानव।
2: अरे बेटा उसे तो मरना ही था, वो यहाँ कैसे पनप सकता था?
1: वो क्यों पापा?
2: बेटा क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु वैसी नहीं है जैसी कि सेब के पेड़ या ऑर्किड के पौधे को पनपने के लिए चाहिए।
1: ये जलवायु है क्या?
0: वही मौसम, जहाँ सेब होते हैं वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती।
3: हाँ। नहीं नहीं नहीं सृष्टि, जलवायु और मौसम दोनों एक नहीं है।
0: वो क्यों विवेक भैया?
3: अरे सृष्टि देखो, आज जैसे सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, कल धूप निकल आए तो मौसम बदल जाएगा, इस तरह मौसम बदलता रहता है।
0: अच्छा, हमारे देश का मौसम कुछ महीनों बाद बदल जाता है, सर्दी के बाद गर्मी फिर बरसात।
3: हाँ बिल्कुल, मौसम महीनों में क्या एक दिन में ही कई बार बदल सकता है, जबकि कहीं कहीं की जलवायु को बदलने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं।
1: लाखों साल?
0: इसका मतलब हम जो टीवी रेडियो या समाचार पत्रों में पढ़ते सुनते हैं वो मौसम के बारे में होता है, जलवायु के बारे में नहीं।
3: हाँ क्योंकि जलवायु इतनी आसानी से परिवर्तित होती ही नहीं।
0: पर जलवायु से जीवों में तो परिवर्तन आ सकते हैं, है ना विवेक भैया?
3: हाँ यही तो बात है, मौसम से हम निपट सकते हैं।
1: मतलब?
3: मतलब मौसम वहाँ के जीवधारियों के रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि को भी प्रभावित कर सकता है।
2: और जलवायु के बारे में भी तो बताओ।
3: आप तो जानते ही हैं, जलवायु तो जीवधारियों के पूरे वंश को प्रभावित कर सकती है।
2: कौन जीवधारी कहाँ पनपेगा ये किसी जगह की जलवायु ही निर्धारित करती है।
3: अब मानव तुम डायनासोरों को तो जानते ही हो।

0: वही भारी भरकम शरीरों वाले दानव जैसे जी।
1: हाँ, वो एक समय धरती पर राज किया करते थे और आज उनका नामो निशान तक नहीं बचा है। जानते हो क्यों?
0: क्यों?
1: किसी बड़ी घटना से पृथ्वी की जलवायु में अचानक परिवर्तन आया। डायनासोर जलवायु के इस परिवर्तन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और मिट गए।
0: तब फिर ये जलवायु है क्या?
2: ये तो सबसे अच्छी तरह तुम्हें बेमौसम आया ये मौसमी व्यक्ति ही बता सकता है। हाँ भाई, मैं देखो सूर्य प्रकाश, आज तो मेरा दूध वाला भी आया है और मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा भी नहीं हुआ। मैं तो बस
3: देख देख देख देख पवन, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, फिर तो सफाई काहे की दे रहा है। और अब आया है तो चाय पीकर तो तू जाएगा ही है।
2: अरे भाई, अब तुम इतना कह रहे हो तो फिर अब पीनी ही पड़ेगी।
3: हाँ हाँ, ये एहसान भी मुझ पर ही सही है। अरे वसुधा, सुनती हो?
4: क्या है?
3: अरे पवन आया है, मौसम विभाग वाला अपना पड़ोसी।
4: चाय तो ये पीकर ही जाएगा है ना।
0: इस उम्र में भी आप लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा आता है।
2: इस उम्र में क्या कह दिया, ये तो आपने सारा कबाड़ा ही कर दिया। अरे भाई, मैं और सूर्य प्रकाश तो अभी जवान है।
3: क्या बात कही तूने तो भाई, फिर तो पकौड़े भी खिलाएंगे।
2: क्या बात है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए जवान लोग अंदर चलिए।

0: हाँ तो सूर्य प्रकाश।
1: भवन अंकल आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं।
0: अरे तो भाई अभी सब लोगों को बैठ तो जाने दो। मानव बेटा तू इधर आ मेरे पास, और विवेक तू उस मानव वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जा। हाँ तो सृष्टि,
1: जलवायु।
0: हाँ जलवायु, इस क्षेत्र में आम तौर पर वातावरण की क्या स्थिति रहती है, तापक्रम कैसा रहता है, पानी कितना और कब बरसता है, हवाएं कैसी और किस दिशा में चलती हैं, धूप वहाँ कितनी तेज होती है और दिन में कितने घंटे तक रहती है, बर्फ पड़ती है कि नहीं, और अगर पड़ती है तो कितने दिन तक उस क्षेत्र को ढके रहती है, इस सब को काफी लंबे समय तक देखकर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसे कहते हैं जलवायु।
2: पर अंकल लंबे समय तक।
0: हाँ विवेक, मानकों के आधार पर 35 वर्ष के मौसम संबंधी इन आंकड़ों का अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसे मानते हैं वहाँ की जलवायु।
1: 35 साल।
0: हाँ मानव, काफी लंबा समय है ये, है ना? अतः अब कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि 10 साल तक के मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके भी किसी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है।
1: अच्छा। मतलब ये कि किसी जगह के लंबे समय का औसत मौसम ही उस जगह की जलवायु कहलाता है।
0: अब तुम ठीक समझे सृष्टि।
3: और इसका मतलब ये कि किसी जगह की जलवायु बहुत सारे परिवर्तनों से मिलकर बनती है।
0: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, ये बात तो है भाई, बहुत सारे कारक मिलकर किसी जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं।
2: अंकल बहुत सारे कारक, जैसे
0: जैसे तुम्हारे पापा, मतलब कि सूर्य को ही ले लो।
4: नहीं पवन जी, सूर्य को नहीं, अभी तो इस चाय को ही ले लीजिए।
0: अरे वाह वसुधा भाभी, वाह, यू आर ग्रेट भाभी।
3: देखा देखा देखा बच्चों, वसुधा की चाय ने कैसे बदल दिया पवन की बातों का मौसम।
0: अरे भाई मौसम ही तो बदला है ना सूर्य प्रकाश, जलवायु नहीं।
3: अरे जलवायु भी बदल जाएगी जब वसुधा पकौड़ियाँ खिलाएगी।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि मौसम में जल्दी जल्दी होने वाले इन परिवर्तनों का जलवायु पर कोई असर नहीं पड़ता भाई, रोजमर्रा की घटनाओं से मौसम बदलते हैं, जलवायु नहीं। अभी चाय पी जाए।
3: तुम भी लो, लो, लो, लो, लो।
0: हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं,
1: सूर्य।
0: सूर्य सूर्य ही सारी पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
3: हाँ इसीलिए किसी जगह की जलवायु के निर्माण में सूर्य प्रकाश, नहीं क्या, सूर्य सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है।
0: सूर्य प्रकाश, सूर्य अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है भाई, हमें तो उसका 1/2 अरबवां भाग ही मिल पाता है, फिर भी बच्चों जानते हो ये कितनी होती है?
1: कितनी?
0: 230 खरब अश्व शक्ति प्रति मिनट।
1: 230 खरब अश्व शक्ति।
0: हाँ अगर हम इस सारी ऊर्जा को प्रयोग कर सकें तो 1 मिनट में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से पृथ्वी वासियों का 2 बरस तक का काम चल सकता है।
2: अंकल मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली इस ऊर्जा में अगर 13% की भी कमी हो जाए तो सारी पृथ्वी करीब 1 मील मोटी बर्फ की तह के नीचे दब सकती है।
1: और अगर इस ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए तो
2: सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में 30% की बढ़त से ही पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु जलकर राख बन सकती है।
0: करीब करीब ठीक ही कह रहे हो तुम विवेक, ये सूर्य पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में और इसे हमारे रहने लायक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
3: भाई, तभी तो लोग हमें देवता मतलब सूर्य को देवता मानते हैं।
1: पर अंकल सूर्य से तो ये गर्मी, मेरा मतलब ऊर्जा, हमें धूप के रूप में मिलती है ना?
0: हाँ मानव बेटा, अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सूर्य से ये ऊर्जा हमें 3 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। विवेक तुम जानते हो कि कौन सी?
2: हाँ हाँ अंकल जानता हूँ, एक तो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट तरंगे, दूसरे दिखाई देने वाले प्रकाश की तरंगों के रूप में, और तीसरे अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगों के रूप में।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक, पर जैसे ही ये तरंगे वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुँचती है तो इनका लगभग 1/3 हिस्सा बादलों, सूक्ष्म धूल कणों और गैसों के अणुओं द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है।
1: सत्यानाश, कितनी सारी ऊर्जा बेकार में गई। नहीं तो
5: नहीं मानव, अगर ये ऊर्जा वापस परावर्तित ना होती तो
1: तो पृथ्वी पर जीवन का हर रूप जलकर राख हो गया होता।
5: तुम्हें कैसे मालूम दीदी?
1: अरे बुद्धू, अभी विवेक भैया ने नहीं बताया था कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा में अगर 30% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो पृथ्वी का हर जीवित प्राणी जलकर राख हो जाएगा।
3: देखा पवन, सृष्टि बेटी की याददाश्त।
0: सृष्टि बेटा, जितनी भी ऊर्जा अब वायुमंडल से गुजरती है उसका करीब 15% हिस्सा वायुमंडल की ओजोन, धूल कणों, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा सोख लिया जाता है।
3: हाँ, और इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है।
0: क्या खूब कही भाई, हिसाब ही तो तुम पक्के।
3: वो तो
0: करीब 51% ऊर्जा ही इस तरह धरती की सतह तक पहुंच पाती है।
2: और यही ऊर्जा प्रभावित करती है जलवायु को, है ना?
0: हाँ विवेक, जब सौर ऊर्जा की ये किरणें पृथ्वी की सतह पर चट्टान, रेत, मिट्टी और पानी आदि से टकराती है ना, तो ये उस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती है जिससे हमें मिलती है गर्मी या ऊष्मा।
1: और इस ऊष्मा से नियंत्रित होती है पृथ्वी के किसी भी हिस्से की जलवायु, है ना पवन अंकल?
5: अंकल, आपकी बातों से तो ये अनुमान लगता है कि सूरज धरती को हर जगह एक सी ऊर्जा देता है, तब धरती के अलग अलग हिस्सों की जलवायु अलग अलग कैसे हो जाती है?
0: दरअसल बेटा, ऐसा धरती की अपनी खूबियों की वजह से होता है।
1: धरती की खूबियाँ, वो कौन सी?
0: अच्छा बेटा, एक बात बताओ, हमारी धरती का आकार कैसा है?
5: गोल, पर ध्रुवों पर थोड़ा चपटा।
0: अरे, इसीलिए धरती की आकृति नाशपाती जैसी हो जाती है। इस आकृति के कारण सूरज की किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती।
1: वो कैसे अंकल?
0: देखो सृष्टि, पृथ्वी की आकृति के कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है
2: और इससे भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है।
0: हाँ विवेक, अब हम जैसे जैसे मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस जगह पर पड़ने वाली किरणों का कोण कम होता जाता है,
2: जिससे उस जगह पर इन किरणों की तीव्रता भी कम होती है।
0: बिल्कुल ठीक, अब ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते तो सूर्य की किरणों का कोण इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर तापमान शून्य के आसपास हो जाता है।
2: वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनते ही ठंडे क्षेत्रों की हवाएं उस जगह को भरने के लिए चल पड़ती हैं, जिससे बीच के क्षेत्रों में भी हवाएं बहने लगती हैं।
1: इस प्रकार तो हवाएं भी किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती होंगी।
0: भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, पर पृथ्वी का घूमना भी हवाओं की दिशा को बदल देता है। इसीलिए आमतौर पर ये भूमंडलीय हवाएं पूरब पश्चिम दिशा में बहती हैं, ना कि उत्तर दक्षिण दिशा में।
1: अच्छा पवन अंकल, एक बार हम लोग चेन्नई गए थे, भयंकर गर्मी थी वहाँ, फिर हम लोग वहाँ से ऊटी गए, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि बस मजा आ गया। अब ये दोनों जगह तो भूमध्य रेखा से करीब करीब एक सी ही दूरी पर है।
3: पवन, सृष्टि शायद ये पूछना चाहती है कि एक ही जगह पर पहाड़ी भाग की जलवायु अलग हो जाती है और मैदानी भाग की अलग, वो कैसे?
0: देखो सृष्टि, सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पड़ती है उसका काफी भाग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर सतह के पास के वायुमंडल में जाकर उसे गर्म रखता है। पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाती।
5: वो क्यों अंकल?
0: देखो मानव, बादल और धूल कण जो कि वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होते हैं, वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती इस ऊर्जा को फिर धरती पर परावर्तित कर देते हैं
2: और इससे सौर ऊर्जा की ये मात्रा पर्वतों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और वहां का वातावरण ठंडा रहता है।
0: भाई पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है ना, तो ये भी अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का 70-90% भाग वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है।
2: और पहाड़ों पर वायु काफी विरल होती है, इसमें उन धूल कणों की मात्रा भी काफी कम होती है जो इस बाहर जाती सौर ऊर्जा को पुनः वापस पृथ्वी की सतह की तरफ परावर्तित करते हैं।
0: सो इन सब घटनाओं के सम्मिलित असर की वजह से पहाड़ों पर मैदानी भागों की अपेक्षा तापमान काफी कम रहता है। समझ गए ना बच्चों?
5: जी।
0: अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ।
3: अरे अरे बैठो ना पवन, जल्दी क्या है?
0: अरे नहीं नहीं सूर्य प्रकाश, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी से कहकर आया था कि मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करके यूं आया। वो मेरे साथ बाजार जाने के लिए तैयार होकर बैठी होगी और मैं यहाँ बातों बातों में सब भूल गया।
5: पर पवन अंकल वो...
0: ना बेटा, अब कुछ नहीं, मैं चलूं वरना तुम्हारी आंटी मेरे घर पहुँचते ही मुझे कच्चा चबा जाएंगी।
3: अरे क्यों भाई, क्या घर में कुकिंग गैस खत्म हो गई है?
0: गगन,
2: हाँ?
0: आज के डेटा देख लिया तुमने?
2: हाँ पवन, पर क्यों, डेटा के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो?
0: वो इसलिए गगन कि आज शर्मा जी नहीं आए हैं, आज के मौसम का पूर्वानुमान हमें ही फीड करना है।
2: ओ, अच्छा।
6: नमस्ते पवन अंकल।
0: अरे विवेक, आज ऑफिस में कैसे?
7: बस अंकल। नमस्ते, नमस्ते अंकल।
0: अरे सृष्टि, मानव, तुम भी? नमस्ते नमस्ते।
2: आओ भाई आओ, कैसे हैं तुम लोग?
1: उस दिन हम लोग जलवायु की बात ही कर रहे थे कि कल मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला करने को, जानते हैं किस विषय पर?
0: क्या, जलवायु पर?
1: हाँ, मैंने भी जानबूझकर ले लिया, सोचा आप तो हैं ही, सो मदद कर देंगे, और गगन अंकल भी। इसीलिए तो मैं विवेक भैया के साथ यहाँ पर आई हूँ। और रहा मानव का सवाल, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर मानव चिपक ही जाता है।
0: अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आओ बैठो तो सही, खड़े क्यों?
2: अब बताओ तुम्हें जानना क्या है जलवायु के बारे में?
1: ये तो ठीक से नहीं पता गगन अंकल कि क्या जानना है, पर पवन अंकल ने हमें बताया था कि पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में सूर्य और खुद पृथ्वी का क्या योगदान है।
6: हाँ अंकल, बाकी और भी तो बहुत से कारण होंगे जो किसी जगह की जलवायु को नियंत्रित करते होंगे।
2: हाँ विवेक, है ना, सूर्य और धरती की विशेषताओं के अलावा सागर और पहाड़ भी पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पवन?
0: हाँ गगन, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग में तो सागर ही है। धरती पर पाए जाने वाले पानी का 97% पानी तो इन्हीं सागरों में भरा है।
6: सागरों से ही तो वो जलवाष्प बनती है जो जमीन पर जाकर बारिश करती है ना।
2: क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का 3/4 भाग तो सागरों के ऊपर ही स्थित है, अतः इसका जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
0: देखो बेटा, सौर ऊर्जा के प्रभाव से समुद्र के पानी को गर्म होने में भी काफी समय लगता है,
2: और इसीलिए समुद्र के तटों पर बसे क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन काफी हल्के होते हैं।
1: मतलब?
0: देखो बेटा, यहाँ दिन रात और गर्मी सर्दी के तापक्रमों में काफी कम अंतर होता है।
5: हाँ, जैसे मुंबई में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी, बस थोड़ी बारिश ज्यादा होती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और वो भी इन्हीं सागरों के कारण।
0: इसके अलावा समुद्र के अंदर ठंडी और गर्म पानी की जलधाराएं बहती हैं। ध्रुवीय समुद्रों से ठंडे पानी की जलधाराएं सागर की तली के निकट बहती हुई इस ठंडे पानी को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं।
6: अंकल, अटलांटिक महासागर की तरफ से गर्म पानी की एक धारा उत्तर की ओर भी तो बहती है।
2: हाँ विवेक, इसमें मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी की धारा भी मिलती है, तब इसे खाड़ी प्रवाह कहते हैं।
6: अच्छा।
0: देखो विवेक, गर्म पानी की इस समुद्री धारा के चलते पश्चिमी यूरोप के सागर तट पर बसे इलाके जिन्हें भूमध्य रेखा की दूरी के चलते एकदम ठंडा होना चाहिए था, उनकी जलवायु थोड़ी गर्म होकर अविश्वसनीय रूप से सुहावनी हो जाती है।
5: अच्छा। मतलब ये कि समुद्र के अंदर बहने वाली ये गर्म और ठंडे पानी की धाराएं भी समुद्र तटीय इलाकों की जलवायु को बदल देती हैं।
2: और सागरों के अलावा पहाड़ भी किसी जगह की जलवायु को गंभीरता से प्रभावित करते हैं।
5: हाँ, उस दिन पवन अंकल ने बताया था कि क्यों पहाड़ों पर मौसम ठंडा रहता है।
2: हाँ मानव, इसके अलावा पर्वत जलवायु विभाजक का काम भी करते हैं।
1: जलवायु विभाजक, वो कैसे पवन अंकल?
0: देखो सृष्टि, मान लो हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो जाएं, तो इसके दोनों तरफ ढलान होगी, है ना? एक तरफ की ढलान की तरफ से हवा आती है, इसे विंडवर्ड ढाल कहते हैं,
2: और इसके दूसरी ओर की ढलान को प्रतिपवन या लीवर ढाल कहते हैं।
0: जब समुद्री तल से ठंडी और नम हवा बहते बहते इन पर्वतों तक पहुंचती है ना, तो रास्ते में पर्वत पर जाने पर ये उससे टकराकर और ऊपर उठती है, जिससे ठंडी होकर ये पर्वत के इसी तरफ अपने जलवाष्प का खजाना खाली कर जाती है,
5: यानी कि बरस जाती है।
0: हाँ मानव, जब पर्वत की चोटी के ऊपर से होकर ये प्रतिपवन ढाल की ओर पहुंचती है, तो इसमें नमी बची ही नहीं होती, इसलिए प्रतिपवन ढाल पर बसे इलाके सूखे रह जाते हैं।
1: मतलब पर्वत के एक तरफ खूब बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखा।
0: हाँ सृष्टि, इसीलिए तो गगन कह रहा था कि पर्वत जलवायु विभाजक का काम करते हैं।
2: अब हमारे हिमालय को ही ले लो, इसके कारण गंगा यमुना के कछार में खूब बारिश होती है, उत्तर की नदियों को पानी मिलता है, खुद हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमने के लिए नमी मिलती है,
0: और इसकी प्रतिपवन ढाल पर है तिब्बत, जहां काफी कम ही बारिश हो पाती है।
2: दूसरे, ये ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में घुसने नहीं देता, जिससे हमारे यहाँ की पहाड़ी जलवायु सुखद हो जाती है और तिब्बत की इतनी कठिन।
6: अच्छा गगन अंकल, वनों की भी तो किसी जगह की जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2: हाँ विवेक, वनों की ही क्या,
8: पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी वनस्पतियों की पूरे विश्व की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
5: अच्छा। वो कैसे गगन अंकल?
8: देखो सृष्टि, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाते हैं। जानते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या असर डालती है?
5: हाँ, ये तो ग्रीन हाउस गैसों में से एक है।
8: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, ये उन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है पर पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल से निकलने से रोक देती है
5: और इससे वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है। इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: शाबाश मानव, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब सोचो अगर वन इस कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी खपत ना करें तो
5: वातावरण का तापक्रम बढ़ जाएगा
8: और वो भी इतना कि रहना मुश्किल हो जाए, पहाड़ों पर की बर्फ पिघल जाए, सागरों का स्तर बढ़ जाए, तट पर बसे शहर सागर में डूब जाएं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़े कि सांस लेना कठिन हो जाए।
0: इसके अलावा जंगल एक और परिवर्तन लाते हैं अपने आसपास की जलवायु में।
5: वो क्या पवन अंकल?
6: मैं बताऊं अंकल, पौधे और अन्य वनस्पतियां भूमि से पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में छोड़ते रहते हैं जिससे वनों की जलवायु आर्द्र या नम होती है। दूसरे ये उस स्थान की बारिश को भी तो प्रभावित करते हैं।
8: और जलवायु के दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्र को वुडलैंड एरिया कहते हैं।
5: वुडलैंड एरिया?
8: हाँ, इन क्षेत्रों की एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है।
5: विशेष प्रकार के क्यों?
0: वो इसलिए मानव कि इस प्रकार के वनों में प्रकाश की खासकर पराबैंगनी विकिरण की बहुत कम मात्रा जमीन तक पहुंच पाती है। बहुत घने जंगलों में तो सौर ऊर्जा का 1/10,000वां हिस्सा ही वनों की भूमि तक पहुंच पाता है।
8: हवाएं भी इन घने वनों में तेजी से नहीं बहती। दूसरे ऐसे जंगलों की वनस्पतियों से इतनी नमी पैदा होती है जिससे वहाँ स्थानीय क्षेत्र में बारिश होती है।
0: पर ये बारिश भी पूरी की पूरी वनों की जमीन तक कहाँ पहुँच पाती है?
8: हाँ, बहुत सारी बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराती हैं और ये पानी वहाँ पत्तियों के ऊपर छितरा कर ऊपर ही रह जाता है जहाँ से ये सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस तरह बहुत सारा पानी तो सूरज की गर्मी से ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है।
0: भाई, थोड़ा बहुत बारिश का पानी जो जमीन तक पहुंचता भी है वो भी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां बहाकर नहीं ले जा पाता, वो वहीं पड़ी सड़ती रहती हैं,
8: जिनसे कभी कभी मीथेन भी बन जाती है।
6: और मीथेन भी तो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है।
8: इसीलिए वनों की जलवायु अलग तरह की होती है।
5: अलग तरह की कैसे गगन अंकल?
8: यहाँ दिन तो काफी ठंडा रहता है पर रातें गर्म हो जाती है।
0: हेलो, हाँ हाँ भेज रहा हूँ। अरे अभी कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए। अरे पता है शर्मा जी आज नहीं है, मौसम की सूचना हमें ही फीड करनी है। ओके ओके ठीक है।
5: तो पवन अंकल अब हम चलते हैं।
6: हाँ अंकल, काफी समय ले लिया आपने।
5: हाँ, और इस चक्कर में आप अपना काम भी नहीं कर पाए।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे बस अभी बनाए देते हैं वेदर रिपोर्ट। और हाँ सृष्टि बेटा, प्रोजेक्ट में अगर कोई और दिक्कत हो तो फिर आ जाना।
5: जी,
0: ठीक है
5: जी,
6: थैंक यू अंकल।
5: अच्छा अंकल,
6: बाय।
9: अरे विवेक बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है इस समय रात को।
6: हाँ जी बाबा, देखता हूँ। अरे ताऊ जी आप आइए।
9: प्रणाम।
6: पापा ताऊ जी आए।
9: अरे दादा आप पाव लागू।
10: अरे खुश रहो सूरज, खुश रहो। कैसे हो?
9: बस बिल्कुल ठीक हो। अब बहुत लेट पहुंचे दादा, गांव से लेट चले थे क्या?
10: क्या करें, चले तो टाइम पर ही थे और रास्ते में मोटर खराब हुई।
9: अरे दद्दा, अब ऐसा करो थक गए होगे, हाथ पांव धो के खाना पीना खा लो फिर आराम करो।
10: अरे नहीं सूरज, अब खाना नहीं खाएंगे। अब तो हम आराम करेंगे। ऐसा करो हमारी खटिया बाहर बिछवाए दो।
9: अरे बाहर दद्दा?
10: अरे गांव के आदमी हैं, अरे बाहर ही सोएंगे।
9: अच्छा जैसी मर्जी है आपकी दद्दा, ठीक है सुबह बात करेंगे दद्दा।
5: ताऊ जी आप ब्रश कर रहे हैं?
10: हाँ हाँ हाँ मानो बिटुआ।
5: तो आपने अपने सामने नल क्यों खुला छोड़ रखा है?
10: ओ बिटुआ, ब्रश के बाद खुला भी तो करना पड़ेगा ना।
5: अरे ताऊ जी, तो तभी नल खोलिए ना, पहले से क्यों खोल रखा है?
10: हैं?
5: ताऊ जी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह आप हर रोज करीब 1 बाल्टी पानी बिना बात के नाले में बहा देते हैं। यानी कि 1 महीने में 30 बाल्टी और 1 साल में 365 बाल्टी। और शहर का हर आदमी यही तो कर रहा है, इस तरह लाखों बाल्टी पानी हर साल आप लोग बेकार ही नाली में बहा देते हैं।
10: ये बात तो है माना बिटुआ,
5: और वो भी तब जब दुनिया की आधी आबादी को आज तक पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, फिर तो ये अपराध हुआ ना ताऊ जी।
10: अरे हाँ माना बिटुआ, अरे बिटुआ तू कितना समझदार हो गया है रे। तो ले, मैं आज से प्रण करता हूँ कि पानी की इस तरह की बर्बादी कभी नहीं करूंगा।
5: ये हुई ना बात हमारे ताऊ जी। अरे
11: धरती मेरी धरती अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी सुन रहे थे जलवायु।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।

इसीलिए तो कहता हूं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: रे मनोज, कायम उलट काय बैठा हो, का बात होगी?
1: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसो कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
0: तो का हुआ, मिलो ना? तो
1: मिलो तो है, पर याए देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
0: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी को नाम कुछ और गेर दियो
1: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
0: तो का बात है
1: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
0: ए तो यार, इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
1: तो अभी वो ठीक ना होवे?
0: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरो टीको लगवा लिया हो और प्रमाण पत्र में न लिखा गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण न लिखा गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, यो सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यो बस एक ही बार ठीक हो गया।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकु करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप यहाँ घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाई ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाई ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा जाएगी। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hani madem ayağımız ha? Yavrum ne?
1: Hi, ben Uran Müce. Aap mujhe sun rahe hain Suno Sharda at 90.8 FM.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है।

टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है, जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
0: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM।

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लाविटर मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.8

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: चुटकी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
3: माहवारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की माहवारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
2: माहवारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी माहवारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
3: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही माहवारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। माहवारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सही।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी, सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित, अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है, या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हां जी भाई कोट बड़ी पेंदी हुंदी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे कित मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं तो ट्यूशन बारे पूछण आया सी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Anand Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: क्या आपको पता है, गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है,
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से

निकलना मुश्किल हो तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
1: कुछ भी करा रहा हूँ हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।

0: कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
3: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाएं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें डब्ल्यू

0: rtc.in.
1: The world is here.
2: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
3: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
2: अरे वाह। नंबर दो,
4: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
2: शाबाश। नंबर तीन,
3: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
2: बढ़िया। रोल नंबर चार,
5: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
2: अरे वाह। तुम
3: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
2: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
6: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।